0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोको कॉल मी
1: ईटी विनो और रेडियो